जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे तिस साहिब की टेक नानक मणे माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

इतनी हाजरी प्रवान करनी पर चुकदी खिमा। सो आओ हुण आप जी नूं सत्कार जो ज्ञानी अगंत सिंह जी लड़ीवार कथा गुरमुख विचारां द्वारा निहाल करनगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरी भर रहे सत्संगी जनों अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे वडभागी हो तंता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ जो साम दे दीवाना विच सतगुरां दी पावन बाणी दी विचार चल रही है वह विचार आपां सांझी कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिस पावन शब्द की आपां विचार कर रहे हाँ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 414 ਅਤੇ 415 ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਆਪ ਪਛਾਤਾ। ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ गुरु की सेवा करके गुरु की सेवा की है। गुरु दे दसे हुए जीवन राह ते तुरना गुरु दे उपदेश नूं अपने जीवन विच लियाउणा किहड़े जीवन विच अमली जीवन विच अमल विच लियाउणा। गुरु दे उपदेश मुताबक कर्म करना ये गुरु की सेवा है।

जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ। विसवे चस्या कड़िया पहरा थित्ती बारी माह होवा सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला गगन मै थाल रव चंद दीपक बने तारे का मंडल जनक मोती। तूप मल्याण लो पावन चवरो करे सगल बन राए फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ। सहस्तव नैन नन नैन है तो हे काओ सहस मूरत नना एक तो ही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही। सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिस दै चानन सब मह चानन होए। गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत इस भावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो आनंदनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारंक होए जाते तेरै नाय वासा। राग गवली पूर्बी महला चौथा काम क्रोध नगर बह भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिब मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ। साकत हर रस साध ना जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा हे। ज्यों ज्यों चल है चुबै दुख पाव है जम काल सह है सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण भव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहसोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्बी महला पंचवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। ईहा खाट चलो हर लाहा आगै बसन सुहेला। आउद कटै दिन सरैणारे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ। एहो संसार विकार सन से मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस हे जगाए पी आवै एहो रस अकथ कथा तिन जानी। जा को आए सोई बिहज हो हर गुरते मन है बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु।

प्रभु का सिमरन तीर्थ शनानी प्रभु का सिमरन दरगाह मानी प्रभु का सिमरन हुए सो भला प्रभु का सिमरन सफल फला से सिमरै जन आप सिमराय नानक ताके लागो पाए प्रभु का सिमरन सबते उच्चा प्रभु का सिमरन उदरा मोचा प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझा प्रभु का सिमरन सबके सुजा प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नामृत माहे समाहे प्रभु जी बसे साध की रसना नानक जनका दासन दसना प्रभु को सिमरे से धनवंते प्रभु को सिमरे से पतवंते प्रभु को सिमरे से जन प्रवान प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे प्रभु को सिमरे से सुखवासी प्रभु को सिमरे सदा विनाशी सिमरन ते लागे जने आप दयाल्ला नानक जन की मंगेर वाला प्रभु को सिमरे से परपकारी प्रभु को सिमरे तन सदबलिहारी प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे प्रभु को सिमरे तन सुख बेहावे प्रभु को सिमरे तने आत्म जीता प्रभु को सिमरे तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरे तने आनंद कनेरे प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपाते अंधन जाग नानक सिमरन पूरा भाग प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभु कै सिमरन कबूना चूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहस समानी प्रभु कै सिमरन नेचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल बेगासन प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार सिमरह से जन जन को प्रभु माया नानक तिंजन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन पाए सिद जति दाते हर सिमरनी चौंकुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना

ज्ञान के जो भाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला जैसे मैल न लागे जरा ब्रह्म ज्ञानी के मनो प्रकाश जैसे तरु प्रयाकाश ब्रह्म ज्ञानी के

राष्ट्रपति कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बान भ्रमे उदासी कई कोट वेद के सुरते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कब का विचारे कई कोट नवतन नाम ध्यावे नान करते कंत ना पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिगात्म ने कोर कई कोट पर दर्भ को हिरे कई कोट पर दुख ना करहे कई कोट माया सरब माहे कई कोट पर देश परमाहे जिजित लाभ तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राज रस भोगी कई कोट पंखी सर्ब उपाए कई कोट पाथर बृखन बजाए कई कोट पवन पाणी बह संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सेर शत्र सगल समग्री बनाया सूत तारे नानक जिस जिस भाव है तेस तेस निस्तार कई कोट राजस्थान सात कई कोट वेद पुराण सिमरतर शास्त्र कई कोट किए रतन संबंध कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख किनर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुगर मृगाच सबता है नेरा सब हूं ते दूर नानका अलप तरिया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बहु जूनी फिरे कई कोट बैठ जी गाये कई कोट काले थक पाहे कई कोट किए तरमंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय भाणा तैते राखे नानक सब कुछ प्रभु का हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संगत निबलागी कई कोट प्रभु को खोजंते आत्म में पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ्यास तिनको मिल्यो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सतसंग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट होय अवतार कई जुगत किन्नो विस्तार कई बार बसरो पासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट किन्ने बापांत प्रभ ते ब्रह्मा समात ताकंत ना जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हो बतात्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को रेतरे कई कोट नाम रस बीवे अमर भय सासा दी जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे अपने जन को सा सा संभारे नानक होए परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहारण जल थल मैयल सोए अष्टपदी।

राष्ट्रपति जिसके अंदर राज अभिमान सो नरक पाति हो समान, जो जाने मैं जो बलमंत सोह दृष्टा का जनता पिसको कर्मंत कहावे, जन्म मरे भो जौन प्रमावे, धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपास करता है गरीबी बसावे, नानक इहां मुक्ति आगे सुख पावे, तरमंता कर कर बावे त्रिन समान काश संगना जावे, बहु लश्कर मान कुपर करे आस पर भी तरता का बिना सबते आप जाने बलवंत, घन में जाए बसमंत

अरे शरम पावे सगले फिर थारे अनंत तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार अनंत जतन करे आत्म नहीं द्रव हर तरह को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि नर मन सोए जब लग जाने मौजूद कछ होए तब उसको सुख नाई कोई जब

संगा दुखी सदा अपवैत संगा दुखी किसे का नहीं मैत संगे दुखी को डान लागे संगे दुखी सब त्याग संगा दुखी मां अहंकारी संगा दुखी सदा विकारी संगा दुखी जन्मै मरे संगी दुख न सुख दे ठर संगे दुखी को नाई ठाऊ नानक संत भावे तलय मिलाए संगा दुखी अद बीच ते टूटा है संगा दुखी किते काज न पहुंच है संगा दुखी उद्यान प्रमाइय संगा दुखी उजड़ पाइय संगा दुखी अंदर दे थोथा जो सास बिना मृत की लोथा संगे दुखी की जड़ किश नाहे आपन भी जापे ही खाए संगे दुखी खबर न राखन हार नानक संत भावे तलय उबार संगा दुखी एऊ बिल्ला जल भी हूं मछली तड़फड़ाए संगा दुखी भूखा नहीं राजा जो पावक इंद्र नहीं तरपै संगा दुखी छुट केला जबुआड़ तिल खेत माए दुहेला संगा दुखी धर्म तेरा संगा दुखी संथिया कहत किरतनंद का तुरी पया नानक जो दस भावे सोई थिया संगा दुखी बिगड़ू पोए जाए संगे दुखी को दरगाह मिले सजाए संगा दुखी सदा सहकाइय संगा दुखी ना मरे ना जीवाइय संगा दुखी की पूजे ना आशा संगा दुखी उठ चले निराशा संगा दुख ना दृष्टा को जैसा भावे तैसा कोई होए पया कीर्तना मेटे कोय नानक जाने सच्चा सोए सब गढ़ तिसके वो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु।

अपष्टपदी जब कार्य कशना दृष्टिता पापन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाता बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह जाप तब हर सो कहो किसे व्यापत जब अपने आप आपार भ्रमता मोहकांक शब्द ब्रह्म अपन खेल आप तीजा नान करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनिता बांध मुक्त कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन आवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाय तब शिव सगत कहो कि ठाए जब आप अपनी जोत धरे तब गमन ने डर कमन कत डराय अपन जल ताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसत है जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आप ही चर्जा नानक अपन रूप आप ही परजा जय निर्मल पुरख पुरख पतोता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र नगद कौ कीस जय जो सुरपी जो संग समाप्त

मैं परम व्यापार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की अभ्यान अपन खेल आप कर देखे खेल संकोच तो नानक एक है। जय अवगत भगत आप जय पसरे पा सार संत प्रताप दूह पाक आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौत करे आनंद।

दृष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हारा पेगा विस्तार जात स्वभावित सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किछो अपन सो सब जगत परोए जा को प्रभ जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंतर सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को ना जिस राखे तिस को ना मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अबर कहां को जाए सब श्रेक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंदर बाहर जानू साथ गुण निधान बेअंत बार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर अवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामे रहो ब्याप परत पाले जीवन बापांत जो जो रचो सो तसे त्याज जिस भावित लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंदर विश्वास कर मान्या करनहार नानक एक जान्या जल लागा हर के नाथ सगी आसना बिरथी जाए

अष्टपदी पूरे गुरुका सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चेंद आस अनित त्यागो तरंग संजना की तूर मान मांगा आप छोड़ बेंती करो सा संग अग्न सागर

चारु असंख मूर खांद कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मिले शुमाल पाख खाहे असंख निंदक सिर करह पा

सोई केव कार्य आखा केव साला ही क्यों वरनी केव जाना नानक के आखन सबको आख एक

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजाजन आप सुवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरिन को पल मुँह बद कियो।

परम सम्मान योग जुग जुग अटल चवर शतर तखत दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबह अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साधु संगत जीयो आप सारे विड़पागी हो तनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ अज जो अमृत वेले सतगुरां ने पावन हुक्मनामा बख्शिया उसदी विचार आपा कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो सतगुरां ने पावन फुरमान बख्शिया ओ शब्द चौथे पातशाह धन धन गुरु रामदास पिता जी दी पावन रसना तो उच्चारण किया होया

उन्हें नहीं नजर आते फिर गुस्से च। पर जो गुस्सा शांत हो जाता फिर उस मनुख का जिहड़ा शरीर है वह बड़ा कमजोरी फील करता है बाद च जो गुस्सा उतर गया। इस तरह जो मनुख के अंदर काम वासना जोर करती है काम वासना की पूर्ति ना होए यह मनुख का शरीर बड़ा कुरला होता है बाद च बहुत दुखी होता है। कते लोभ की पूर्ति ना होवे मोह की पूर्ति ना होवे यह शरीर फिर अंदरों बड़ा परेशान होता है यह हिरदा भी परेशान होता है। किते हंकार ना चले बंदे का हंकार की पेश ना आए फिर यह बंदा बड़ा परेशान होता है भाई मैं ही करता फिरदा होता सी अगे तो मेरी गल ही कोई नहीं मानता। कहन लगे मूंद लिए दरवाजे पर कदों मुंदे गुर दिखलाई मोरी मेरी जड़ी एक कमजोरी सी असल विच मैं अपने खेत दे दरवाजे अपने घर दे दरवाजे खुले छड़े हुए सी। वो दरवाजे केड़े ने जिहड़े नौ द्वार ने साडे शरीर दे इन्हां दे राही विकार अंदर प्रवेश कर जांदे सन। अखां मंदा देख लैंदियां सी कन्न मंदा सुन लैंदे सी जीव मंदा बोल जांदी सी इन्हां दे राही विकार अंदर चले जांदे सी ओ अंदर हलचल करदे सी। ते फिर कहिंदे हुण गुर दिखलाई मोरी ये मेरी जिहड़ी कमजोरी सी सुनी रहिंदा अंदरों ये बहुत दुखी करते हैं बंदे नूं जिस बंदे ते हावी होण ना ये उसनों बहुत दुखी करते हैं। जिहड़ा इन्हां तों बचिया रहे वह खुश रहिंदा है वह अंदरों भी खुश बाहरों भी खुश ते जिस दे उत्ते ये हल्ला बहुत दुखी क्योंकि जो अंदर हुंदा है वह चेहरे ते झलक जांदा है बंदे दे चेहरा बयान कर दिंदा है। हुण कहिण लगे मैं अपने शरीर दे ना दरवाजे बंद कर लए मेरी अखां हुण मंदा नहीं वेखदियां कन्न मंदा नहीं सुणदे रसना फिक्का नहीं बोलदी। कहिण लगे हुण अंदर खुशी दे वाजे वज पए अंदर खुशी दे वाजे वज पए। कहिण लगे ना गुरु नानक साहिब जी कहिंदे ने कहिण लगे नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस निम्रता वाला जीवन जीवना है। किते एना होवे भई नाम तां बीज लिया तू पर जिते जिवें जिवें तू नाम जपदा तेरे मन नूं हंकार भी नाल ही चढ़ी जावे तेरे कोल निम्रता वाला जीवन ही ना होवे तेरे अंदर निम्रता आवे ही ना बोल तेरे फेर कुबोल बन जाण। कहन लगे फिर नहीं लाभ मिलना इस करके ये सारा कुछ करके भी निम्रता वाला जीवन जीना है भाव यह भी निम्रता बहुत जरूरी है। बाबा फरीद जी कहिंदे ने कहन लगे तीन गुण बंदे दे अंदर बहुत जरूरी ने होने तीन गुण बहुत जरूरी ने

कछ भेद नहीं गुरु अर्जुन प्रताख्या हर सो कहो टल गुर सेविया एहनस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम।

हर रस पियो हो, हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख दिखो, गुरमत हर रस मीठा लगा, तिन बिसरे सब बिखरस हो।

0: रास मटाई इतर दास पाठ कीरत की गुरु राम दास राखू शरनाई इतर दास पाठ कीरत की गुरु राम दास राखू शरनाई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु साहब जीओ। सतनाम श्री वाहेगुरु साहब जीओ। भगत तेरे मन भावदे दर सोहन कीरत गाउंदे नानक कर्म बाहर

Tengo ancora anche. Torna, vai a stesso anche. Ok. वैसे गद्दी होती है, वो वैसे गद्दी है, हड्डी ऊंची हो जाती है तो वो उतर के चढ़ना, ऊपर चढ़ना Gracias.

0: दारु
1: सुखमनि सुखी अमृत प्रभु नाम
0: भगत जना के मन विश्राम रहौ
1: प्रभु के सिमरन गर्व नाम से
0: प्रभु के सिमरन दुख जम न से
1: प्रभु के सिमरन काल पर हरे
0: प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे
1: प्रभु सिमरन कछ बिघन न लागे
0: प्रभु के सिमरन आंदेन जागे
1: प्रभु के सिमरन भव न व्यापे
0: प्रभु के सिमरन दुख न संतापे
1: प्रभु का सिमरन साध के संग

0: साध कै संग सदा सुख पावे,
1: साध संग वस्त गोचर लहे,
0: साधु कै संग अजर सहे,
1: साध के संग बसे थान उचे,
0: साधु कै संग महल पहुंचे,
1: साध के संग दृढ़।

0: आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता
1: ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोज जाए महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ज्ञानी की